सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं तेरे गुलिस्तान में। सब गुल है बस एक अगर हूं तो खार में हूं। आई हैव एक्सप्लेन टू यू बिफोर ऑल्सो एंड मेनी मेनी टाइम्स बाय नाउ दैट व्हेन एवर दिस पार्ट कम्स तेरे गुलिस्तान में सब गुल है। At that time, think of ourselves. And it touches my heart very, very deeply. I must tell you that. That we think of ourselves as the thorn and everyone else as a flower. O Allah, in this garden of yours, I am the only thorn. Everyone else is a flower. I am causing everybody injury, pain, problem, difficulties, and all kinds of harm and injury. I don't know how many people's hearts I have sliced with my tongue. How many people's property I have harmed by stealing, by fraud, by corruption. How many people's respect and honor I have destroyed with my ghibat. So think of ourselves, don't think of others. तेरे गुलिस्तान में सब गुल हैं बस एक अगर हूं तो खार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शियार में हूं। मुझे भी कुछ फिक्र आखिरत हो बहुत ही गफलत शियार में हूं। रहा मैं बेकार जिंदगी भर बस अब

फूल मुरझा गए, चांदनी ढल गई, अपना जाम भी कह गई हर कली। बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां, कब्र में खाक छानी मगर क्या मिली। फूल मुरझा गए, चांदनी ढल गई, अपना जाम भी कह गई हर कली। बेनिशां बेनिशां हो गए हर निशां, कब्र में खाक छानी मगर।

It's not a place of tamasha. तुझे पहले बचपन ने बरसों खिलाया, जवानी ने फिर तुझको मजनू बनाया. When जवानी comes, the person goes mad. बुढ़ापे ने फिर आके क्या क्या सताया, अजल तेरा कर देगी बिल्कुल सफाया.

से मुझे कुछ खबर नहीं थी तेरा दर्द क्या है यार, वट डिड आई नो माई बिलवड अल्लाह, वट इज़ योर लव, ऑल दिस वर्ड्स दैट आई एम लिसनिंग टू, मारिफत एंड यकीन एंड मोहब्बत एंड क़ुर्ब एंड फनाइयत एंड ऑल दिस थिंग्स, या अल्लाह वे डिड आई नो ऑल दिस थिंग्स, तेरे आशिकों से सीखा तेरे संग दर पे, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर दिस उशाक एंड लवर्स ऑफ योर्स माई बिलवड अल्लाह, आई वुड हैव नॉट नोन एनी थिंग अबाउट योर लव, आई वुड हैव बीन ऑल द टाइम क्राइंग इन द लव ऑफ मटीरियल थिंग्स एंड आई वुड हैव बीन डाइंग इन द लव ऑफ मटीरियल थिंग्स, सो दिस इज योर फजल एंड योर एहसान अपॉन मी माई बिलवड अल्लाह. May Allah Tabaraka wa Ta'ala give us the tawfiq of understanding and making amal.